0: ஆச்சி. ஐயா நான் இருக்கியா போறான்னு யாரு நாமா நீ பொந்து கேனே தில் பாக்கி பொந்து கேனே தில் பாக்கி.
1: অনেক অনেক পছন্দের এবং শিল্পীও কিন্তু আমার ভীষণ পছন্দের, কার গান শোনাবে বলো?
2: হ্যাঁ, এবারে শোনাবো জেমসের কণ্ঠে। আর জেমসের কণ্ঠে গান শুনতে চেয়ে অনুরোধ করেছেন মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন।